कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें रातों ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
2: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
3: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
4: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
3: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
4: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
5: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao, pangde
6: pao. Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
6: ओहो, मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
6: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी, क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: It's commercial time.
1: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 यूके का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनदे पे हो, सुनदे पे हो अपनी दिलानी आवाज, दिलानी आवाज
7: 97.1।
8: Ready to move.
9: It's all about the beats.
10: Wow, FM. Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 एफएम, आई लव इट.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: चिप्स कमर्शियल टाइम।
1: तू को जा मन को जा।
2: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात के तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552538250। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
12: You are listening 97.1 FM.
13: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
14: You are the same. We are playing Faza 97.1 FM.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 यूके का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
7: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी आवाज
8: 97.1
9: This is a public service announcement.
10: Everybody. The station.
11: That plays
12: foot tapping music.
13: Huzzah 97.1 FM.
14: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग
15: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: What are you doing? Wow. Come on, man. Oh, are
1: you serious?
0: Oh, come here.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Huzzah 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए.
8: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
9: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
10: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
9: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
10: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
9: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
10: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
9: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
11: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
9: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
12: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
14: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
14: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
13: Park Foods, जो नाम है मायार का.
15: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
16: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
7: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
16: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
7: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
16: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
7: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
16: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
7: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
16: टेस्ट भी, वाइब भी.
17: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsi Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May 6 PM टिल लेट, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
2: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
3: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
4: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
3: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
4: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
5: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao.
6: Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
5: Meri biwi da visa ho gaya ji.
6: Oho, mubarakbad. Bahut jaldi aa gaya.
5: Sari naseeb di gall hai. Main local visa mahirin di madad layi si ji.
6: Unka naam hi bata de. Hame bhi kabhi zarurat pad sakti hai.
5: AMH solicitors. Hor kaun? ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
6: ਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਗਾ।
5: ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿੰਗਮ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਬੇਸਫੋਰਡ, ਨੋਟਿੰਗਮ।
6: ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ?
5: ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, 0115-671-3677। ਪਿਓਰ ਜਿਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ ਜੀ।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays.
11: Foot tapping music.
12: Huzzah 97.1 FM.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
14: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 यूके का बिगेस्ट मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी वाज
7: 97.1
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
9: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी एक्साइटिंग मॉर्निंग टू ऑल माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा, वेलकम करती हूं आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग में। जी तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM, जहां मिलते हैं आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सी तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलेंगे हम और आप मिलकर अब से लेके ठीक दो घंटे तक, यानी के अब से लेके ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके इसके आज के इस दिन को खूबसूरत, यादगार। सो इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 01157100971, ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सी तो लिसनर्स, जल्दी से जाइए, इस नंबर को सेव करिए और हमें अपने नाम के साथ साथ कोई प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज दें। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्यूरीज हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपको बॉदर कर रही हो या आपको चाहिए कोई पीस ऑफ एडवाइस, वो तमाम सारी चीजें मिल सकती हैं आपको हमसे। बस करना आपने कुछ यूं है कि हमारे नंबर पे जाके आपने हमें लिखकर वो भेज देनी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उन क्यूरीज को दूर करें। इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी है। करना बस आपने इतना है कि आपने जाना है अपने फोन के एप्पल स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल स्टोर, जाकर वहां आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का आइकन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारे रेडियो फजा 97.1 FM की एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। अब बात करते हैं हम अपने उन लिसनर्स की जो ड्राइव कर रहे हैं, अभी अभी घर से रवाना हुए हैं, घरों से बाहर निकले हैं, या तो ऑफिस पहुंच चुके हैं या फिर हैं वो रास्ते में और चाहते हैं कि ड्राइव करते करते उनको कुछ अच्छा, कुछ सुरीला सुनने को मिले, तो वो क्या कर सकते हैं, फजा टैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, बंधे रहिए और हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। इस वक्त जैसा कि टाइम पीरियड चल रहा है, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो इस वक्त अपने ऑफिसेज की तरफ रवा दवा होंगे, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी इस वक्त अपने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे होंगे। और फिर बारी आ जाती है हमारी उन फीमेल्स की, उन लेडीज की जो घरों में रहती हैं, घरों के कामकाज करती हैं, तो आई थिंक सो कि अब तक तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा और अपने घर के छोटे मोटे कामकाज शुरू कर दिए होंगे, क्लीनिंग प्रोसेस भी जारी हो चुका होगा। तो आप सभी लिसनर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो लिसनर्स, शो का बाकायदा आगाज करते हैं, आपसे करते हैं बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बातचीत, लाइट से चिट चैट, लेकिन शामिल करते हैं इस वक्त शो में एक मजेदार सा ट्रैक ताकि आप कहीं बोर ना हो जाएं। सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक और ट्रैक से वापसी पर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।

सी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। तो जिस तरह से हर एक दिन की शुरुआत हम करते हैं किसी पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव चीज़ों से, इसी तरह डेली बेसिस पे हमें अपने दिन का स्टार्ट भी कुछ इसी तरह से करना चाहिए कि हर आने वाला नया दिन हमारे साथ एक न्यू फॉर्म को, न्यू रेजोल्यूशन को लेकर आए। यानी कि हमें डे बाय डे हर आने वाले न्यू दिन के साथ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अच्छा हमारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और हम वो क्या स्टेप्स करें जिनसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आई थिंक सो कि दिन का स्टार्ट थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए, बिल्कुल भी एकेडमिक और बहुत ही ज़्यादा बोर्डम नहीं होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक ऐड किया जाए। होप सो आपको ये साउंड ट्रैक अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई पसंदीदा सा साउंड ट्रैक है और आप चाहते हैं कि हम उसको अपने शो में शामिल करें, सो आप हमें बता सकते हैं। आपकी रिकमेंडेशंस को और आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल किया जाएगा।

तो ये तो लिसनर्स, जैसा कि आज इस मंथ का थर्ड वीक चल रहा है, यानी कि वीकेंड भी अब थोड़ा करीब ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में थक से जाते हैं, हमारा जो एक विल पावर होती है, हमारा जो हौसला होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूसली रोज़ाना वर्क कर रहे होते हैं सो इंसान समटाइम्स डीमोटिवेट भी हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी कि हर ढलता दिन हमें एक नए सफ़र की तरफ, एक नई चीज़ की तरफ उम्मीद दिलाता है। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल, the strength to rise again. See to listeners, फौरी तौर पे अपने चाय का कप उठाइए और मेरे साथ इस इंस्पिरेशनल जर्नी में शामिल हो जाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे हर शो की एक परंपरा है कि हमारा कोई भी शो स्टार्ट होता है एक खूबसूरत से कोट ऑफ द डे से, तो कुछ इसी तरह आज भी लाई हूँ मैं अपने तमाम तर लिसनर्स के लिए एक ऐसा ही खूबसूरत मोटिवेशनल कोट जो बदल देगा आपके दिन को और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को भी।

डियर लिसनर्स, हमारा आज का कोट ऑफ द डे है, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रिबिल्ट माई लाइफ। तो लिसनर्स, चलिए इस खूबसूरत सी बात को जरा दिल से, जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आज के कोट ऑफ द डे का मीनिंग ये है कि जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे बदतरीन रॉक बॉटम वो मजबूत तरीन बुनियाद बन गया है, इस पर मैं अपनी जिंदगी की नई इमारत खड़ी कर सकती हूँ। जैसा कि लिसनर्स, आपकी, मेरी और हम सभी की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वी फील ब्रोकन, वी फील लॉस्ट। लेकिन याद रखिए, स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस। जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं तो वहां से ऊपर उठने का सफर, ऊपर उठने की शुरुआत वहीं से शुरू होती है, एक नया रास्ता वहीं से निकलता है। अक्सर औकात हम कहते हैं कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हम अक्सर मुश्किलात से डर जाते हैं, लेकिन हालांकि वो मुश्किलात हमारी बुनियाद होती हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, मजबूत करती हैं। टू बी अ ट्रू डीवा, योर हार्ट मस्ट बी रिलाइंड ऑन योर फेथ एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट फोकस टू यू, कि आप अपनी जिंदगी में फोकस करें। सो इन मुश्किलात से बिल्कुल भी नहीं डरना। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं और ऐसे सिचुएशन जरूर क्रिएट होती हैं कि जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ना उम्मीदी की तरफ जा रही है, जिंदगी उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से आपने उसको प्लान किया था। होता है ना लाइफ में, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अगर आपकी लाइफ में समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने इमेजिन नहीं किया था, या फिर चीजें जिस तरह से आपने इमेजिन की थी उस तरह से नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप चीज़ों को थोड़ा टाइम दें और कोशिश करें कि हर फेलियर में भी उस छुपे हुई सक्सेस को ढूंढें जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक अपने लाइफ एक्सपीरियंस एक चीज़ बताऊं, तो जो चीज़ एक मैंने नोट की है कि समटाइम्स क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करती हूँ कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ें मैं जैसी प्लान करती हूँ वो उस तरह से नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मेरा रिजल्ट टोटली अपोजिट होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है कि ऑन डैट मोमेंट मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, बट आफ्टर सम टाइम्स आई रियलाइज के जो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई थी उसमें मेरे लिए ही कोई ना कोई बेहतरी थी, कोई ना कोई पॉजिटिविटी थी, जो मुझे उस मोमेंट में नहीं समझ आती, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मुझे रियलाइज हो जाता है, एहसास हो जाता है। तो इसी तरह से लिसनर्स, आप सभी भी अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक कंपेरिजन करें, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें और देखें, और फिर आपको एहसास होगा कि जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट कर रही हैं या फिर जो चीज़ें आपने जैसे प्लान की थी वैसे नहीं हुई, उनके पीछे कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर छुपी होती है।

लिसनर्स, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। चलो सोचा मैंने कि पूछ लेती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है आप सभी की लाइफ में, जिंदगी में, कि कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं, तो एट दैट मोमेंट आपने खुद को किस तरह से इनकरेज किया, किस तरह से आप अपने आप को उस फेलियर के डर से या फिर उस डीमोटिवेशन से बाहर लेकर आए। अभी उठाइए फोन, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो जल्दी से जाइए और जाके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स की लाइफ किस तरह से चल रही है और वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को किस तरह से टैकल करते हैं। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का कोट ऑफ द डे एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का कोट ऑफ द डे जरूर आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तब्दीली लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, और ये आपको तब हेल्प आउट करेगा कि जब आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोमेंट में होंगे कि जहाँ आप फील कर रहे होगे कि अब आगे आप फील हो जाओगे और इस डर से आप आगे नहीं बढ़ रहे होगे। सो

सो लिसनर्स, आई थिंक काफी हमने मोटिवेशनल बातें कर ली हैं। अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि थोड़ा सा म्यूजिक को भी शो में शामिल किया जाए ताकि आप बोर ना हो जाएं। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और फिर यहीं से करते हैं मजीद कंटिन्यू।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से. आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM. जी तो वो तमाम तर लिसनर जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उन सभी के लिए एक बार फिर से बताते चलती हूँ कि 0115-7100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर. सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे अपने ख्यालात शेयर कर सकते हैं. आपके आज के दिन के क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, जिंदगी में क्या करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, तो वो तमाम तरह चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हैं. और मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि बस कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना कि जिनमें आप फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं होते, लेकिन आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, बहुत ज़्यादा बाउंड होते हो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक कि आपका और मेरा रिलेशन भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि भले फिजिकली हम लोग साथ नहीं हैं, लेकिन इमोशनली तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड हों. इसीलिए लिसनर्स, मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने होने का एहसास दिलाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप रेडियो फजा 97.1 FM को सुन रहे हैं.

इसलिए तो लिसनर, जैसा कि हर आने वाला नया दिन अपने साथ लाता है एक नई जस्तजु, एक नई जिदोजहद, इसी तरह से अगर हम जिदोजहद की बात करें तो एक जिदोजहद, एक स्ट्रगल ये भी है कि डेली बेसिस पर डिसाइड करना कि आज खाने में क्या बनाया जाए। क्योंकि अब जैसे कि हम लोग एशियन फैमिलीज में घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बहुत से लोग रहते होते हैं, यानी कि दादा दादी, नाना नानी और छोटे बच्चे बड़े। अब इस तरह से ये होता है कि जब बहुत से लोग रहते होते हैं यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के, तो हर एक बंदे की चॉइस, हर एक बंदे की प्रेफरेंस भी डिफरेंट होती है। सो अब जिस बंदे ने खाना बनाना होता है उसका मेन प्रॉब्लम ही ये होता है कि ये चीज़ सोची जाए। तो लिसनर, जैसे कि अब जो खाना बना रहा है उसका सबसे मेन मसला यही होता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, और क्या ऐसी चीज बनाई जाए जो कि सभी को पसंद आए, सभी की फेवरेट हो, चाहे तो वो हो बच्चे या हो बड़े, और सब उसको शौक से खाएं। क्योंकि कहा जाता है कुकिंग इज अ आर्ट इटसेल्फ, सो अगर आप दिल से बनाएंगे तभी खाना अच्छा बनेगा। तो आप तमाम तरह फीमेल्स की इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं लाई हूँ आज आपके लिए द कुकिंग किचन में ऐसी ही मज़ेदार सी चटपट बनने वाली रेसिपीज, जो कि इंस्टेंटली बन तो जाएंगी लेकिन होंगी भी इतनी मज़ेदार, इतनी डिलिशियस कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी कहेंगे कि वाओ आज खाने में क्या बनाया है। सो जी लिसनर्स, वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते और आप जल्दी से अपनी डायरी, नोटबुक रेडी कर लें ताकि मैं आपको बताऊँ आज की हमारी पहली रेसिपी।

0: See the listeners, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी है द क्रीमी वाइट चिकन कड़ाही। अच्छा, चिकन को एशियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आई फील लाइक कि अगर हम मीट की बात करें तो चाहे चिकन हो, बीफ हो या फिर हो मटन, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग चिकन इज द बेस्ट मीट, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता और सभी का, बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट होता है। हाँ, ये मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे जो हैं वो बीफ खाना इतना पसंद नहीं करते, सो इन्हीं चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि हम आज क्रीमी वाइट चिकन कड़ाही बनाते हैं। अच्छा, इस वाइट चिकन कड़ाही को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं सभी आपसे शेयर करती हूँ, तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लें ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। सो इस चिकन कड़ाही के लिए हमें चाहिए चिकन 500 ग्राम्स, दही 1 कप, योगर्ट। फ्रेश क्रीम की अगर बात की जाए तो आप 1 से 2 कप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया, दोनों ही चीज़ें 1 टीस्पून। अब हरी मिर्चों की बात की जाए अगर तो स्पाइसेस के बिना तो खाना अधूरा होता है, सो हरी मिर्चें चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए 4 से 5 अदद। और फिर बात आ जाती है कुकिंग ऑयल की, सो इट्स अप टू यू कि आप खाना कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, ऑलिव ऑयल में बनाते हैं या फिर वनस्पति घी में बनाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा द मोस्ट फेवरेट यानी कि मोस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट इज नमक यानी कि सॉल्ट। सो इट्स अप टू यू कि आप सॉल्ट किस तरह से लेते हैं। जैसा कि मैंने इस रेसिपी के लिए 500 ग्राम चिकन लिया है, सो इसके अकॉर्डिंग 1 टेबल 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट इट्स इनफ। बट अगर आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर, अच्छा होता है ना हमारे एशियन फैमिलीज में कि कुछ लोग ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़रा नमक को इतना प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं खाने में नमक कम हो। अब अगर मुझसे बात पूछी जाए और मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे खाने में नमक थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, सो फॉर मी 1.5 टेबल स्पून इज इनफ। बट इफ़ यू गाइज, अगर आप लोग ज़्यादा नमक नहीं पसंद करते तो आप 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू यानी कि हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे रेसिपी की जानिब भी, लेकिन क्यों ना शो में एक म्यूजिकल सॉन्ग शामिल किया जाए, तो चलते हैं और सुनते हैं ये ट्रैक और फिर यहीं से कॉन्टिन्यू करते हैं। सो तब तक आप अपने इन्ग्रीडियंट्स को इकट्ठा कर लें ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए और जब आप प्रोसीजर सुन रहे हों तो वो आपके लिए इजी हो जाए।
1: The perfect gift for your loved ones.

तो लिसनर्स, म्यूजिकल सॉन्ग तो सुन लिया, चलिए लेट्स गेट बैक टू द रेसिपी जिसकी हम बात कर रहे थे, द क्रीमी वाइट चिकन कड़ाही। सो आई थिंक सो कि आप सभी ने अभी तक इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब जरा इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन हमने क्या करना है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें, कोई पैन ले लें, कोई कड़ाही ले लें, उसको आपने कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर बासमती घी आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब आपको लगे कि आपका ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है जो कि इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। अच्छा, आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है और साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे आपने तब तक पकाना है कि जब तक आपके चिकन का कलर चेंज हो जाए या फिर आपके चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाए, क्योंकि जैसा कि हम वाइट क्रीमी कड़ाही बना रहे हैं, सो चिकन को आपने तब तक पकाना है कि वह बिल्कुल वाइट हो जाए। अब जैसे ही आपका चिकन बिल्कुल वाइट हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसके अंदर आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, आपने शामिल करना है दही, काली मिर्च, नमक, धनिया और जीरा पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो दही है, दही का जो पानी है, जैसे कि हम जब हम दही ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी वाटर होता है, तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए तब तक आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है। जब ऑयल आपका बिल्कुल अलग होने लगे तो आप समझ जाएं कि अब टाइम आ चुका है इसमें द फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट की ऐड करने का। जी हाँ, जैसे कि क्रीम, क्योंकि हमारी कड़ाही का नाम ही है द क्रीमी वाइट चिकन कड़ाही। सो जैसे ही आपका ऑयल अलग होने लगे आपने क्या करना है, उस क्रीम को, फ्रेश क्रीम को उसके ऊपर से ऐड कर देना है ऐड करने के एक से दो मिनट बाद। जो आपने ग्रीन चिलीज कट करके रखी थी उन्हें भी शामिल कर देना है। अब इस रेसिपी को आपने 2 से 5 मिनट के लिए दम लगा कर रख देना है और आपका रिच और वेलवेटी वाइट चिकन कड़ाही तैयार। देखा लिसनर्स आपने, कितनी सिंपल सी, कितनी बेसिक सी रेसिपी थी और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं थे और किस तरह से झटपट बन गई। तो जी, ये थी हमारी आज की मेन कोर्स द वाइट चिकन कड़ाही। जस्ट फ्यू स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से बेसिक बेसिक से स्टेप्स हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इन इंग्रेडिएंट्स के लिए सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। और आपकी इस समस्या को मैंने हल कर दिया है कि आज आप खाने में क्या बनाएं। सो इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।

उतना एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, लेकिन जब घर में हम उसको ट्राई करते हैं तो ये उस तरह से नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम बनाते हैं गार्लिक नान, ताकि हम उसको वाइट क्रीमी कढ़ाई के साथ खा सकें और अपने मेन कोर्स को कम्प्लीट कर दें। अच्छा, इस गार्लिक नान के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं आप सभी से शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 कप, इसके साथ ही हमें चाहिए दही 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ लहसुन, गार्लिक जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, वो चाहिए हमें। आप कुछ गार्लिक ले सकते हैं, यानी कि 5 से 6 अदद ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और चाहिए हमें मक्खन, नमक हस्ब ज़रूरत। सो ये थी हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट फॉर गार्लिक नान। अब चलिए चलते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह से आप वही रिच टेंडर रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक नान घर में बना सकते हैं।

अच्छा, इसी तरह आपने इसको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी करके पकाना है, और जैसे ही आपके नान का कलर हल्का सुनहरा होने लगे सो समझ जाएं कि आपके गार्लिक नान हो गया है तैयार। सो इसको बनाइए, बना के रख लें, और पकने यानी कि इसके कुक हो जाने के बाद आपने वो जो बटर साइड पे रखा था उसको इसके ऊपर से लगा देना है। जी तो लिसनर्स, इसी तरह से हमारे मज़ेदार से गार्लिक नान हो गए तैयार। देखा आपने, बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सिंपली जस्ट कुछ बेसिक से स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को अगर आप इसी तरह से फॉलो करें तो आप इस मेन कोर्स को बना सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि आज ही इस मेन कोर्स को ट्राई करें। क्रीमी कढ़ाई के साथ गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन इज सुपर, इट्स परफेक्ट। सो इस क्रिस्पी बटरी और एब्सोल्युटली डिवाइन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आई थिंक सो कि ये वो ऐसी रेसिपी है जो कि हमारे बड़ों को तो बहुत अच्छी लगेगी ही लगेगी, लेकिन बच्चों को भी अच्छी लगेगी क्योंकि गार्लिक नान तो सभी का फेवरेट होता है। अब जहाँ हमने इतने नमकीन की बात की, इतने नमकीन खानों की बात की, वहीं पर अब कुछ मीठा ना हो तो मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। सो आज की जो थर्ड रेसिपी है हमारी, वो है मज़ेदार से क्विक शाही टुकड़े। क्विक इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनको बनाना बहुत ज़्यादा क्विक है, पहली टू रेसिपी से भी ज़्यादा।

अच्छा, शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें जो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस 4 से 5 अदद, मिल्क 1 लीटर, चीनी 1 से 2 कप, इलायची पाउडर 1.5 टेबल स्पून, खोया या फिर कंडेंस्ड मिल्क आप 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते फॉर गार्निशिंग। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब जरा चलते हैं रेसिपी की जानिब और प्रोसीजर देखते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेड स्लाइसेस के किनारे एड्स को काट कर अलग से साइड पर रख लेना है और इन्हें एक ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। दूसरी जानिब आपने दूध को चीनी में और इलायची पाउडर के साथ इतनी देर तक पकाना है कि वो पक कर आधा रिड्यूस हो जाए, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि आपने मिल्क के अंदर इस चीनी को ऐड करना है, साथ ही साथ इलायची पाउडर को ऐड करना है, और फिर आपने उसको इतनी देर तक पकाना है कि जो आपका मिल्क है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। फिर आपने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर देना है ताकि बिल्कुल रबड़ी जैसा गहरा हो जाए और टेस्ट भी इन्हेंस हो। सो जब आपका मिल्क अच्छी तरह से पक जाएगा, अच्छी तरह से थिक हो जाएगा, सो इट्स टाइम कि आपका मिल्क रेडी है। सो द लास्ट एंड थर्ड स्टेप इज़ आपने एक डिश लेनी है, कोई सी भी आप डिश ले सकते हैं, उसके अंदर आपने उन फ्राइड स्लाइसेस को स्टेप बाय स्टेप सजा के रखना है और फिर उसके ऊपर से आपने वही गरम थिक दूध शामिल कर देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गार्निशिंग के लिए आप बादाम, पिस्ता, चांदी का वर्क, ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं जो कि घरों में मौजूद ही होती हैं ड्राई फ्रूट्स में। अच्छा, आपने गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ता को ऊपर से ऐड कर देना है, ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है, और फिर आपने रख देना है इसे फ्रीज़र में ताकि आपके जो शाही टुकड़े हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएं, और जब ठंडे हो जाएं तो फैमिली के साथ इन्हें इंजॉय करें। तो ये तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ साथ अभी शो में वक्त हुआ चलता है एक कमर्शियल ब्रेक का। So let's take a short break. Kahin mat jaiyega. We will be right back after a very short break.

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जी तो एक बार फिर से बताती चलती हूँ उन तमाम दर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है कि आप 01157100971 हमारे स्टूडियो के लाइव नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्यूरीज हो उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो, कोई आपका फेवरेट साउंड ट्रैक हो जो आप चाहते हो कि हम अपने शो में प्ले करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी मजेदार से चटपट बनने वाले खानों की, लेकिन एक असली डीवा हमेशा वही होती है जिसके दस्तरखान के साथ साथ उसकी स्किन और उसकी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा ग्रूम और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कहा जाता है इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए दस्तरखान के साथ साथ आपको जरूरत है कि आप अपनी स्किन को और अपनी सेल्फ केयर को भी पूरा पूरा ध्यान दें, पूरा पूरा फोकस रखें। अच्छा, मैंने ये एक चीज बहुत ज्यादा नोट की है फीमेल्स में कि अक्सर औकात जैसा कि वेदर चेंजेस से भी आपकी ब्यूटी पर, आपके मेकअप पर और आपके सेल्फ केयर पर काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अक्सर लोग इस चीज की शिकायत करते हैं कि जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं तो उनका जो मेकअप होता है वो स्टे नहीं करता, स्किन बहुत ज्यादा क्रीसी, बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और भी इस तरह के तरह तरह के मसले। तो लेडीज, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कोई भी मेकअप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपके स्किन सीक्रेट्स में बहुत ज्यादा काम आएंगी, यानी कि वो आपकी स्किन को अंदर से नेचुरल ग्लो देंगी। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली।

मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसा कि अब मौसम काफी हद तक बदल चुका है और तमाम तर लोगों के यही मसले एंड मसाइल हैं, तो क्यों ना जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस को हम आज के तीवर डायलॉग में डिस्कस करें। सो मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है गर्मियों में वो ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियों में जो आपके पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सो इस प्रॉब्लम के तहत हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और बिल्कुल भी फ्रेश लुक नहीं आती। सो चलिए चलते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा मिल्क। आप कोशिश करें कि रॉ मिल्क ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में रोज वाटर। अच्छा, अब आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक आइस ट्रे में डालकर फ्रीज कर देना है विद इन अ होल नाइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब भी कभी आप मेकअप करने लगें या फिर आपने कहीं जाना हो घर से बाहर कहीं पर भी और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ब्यूटीफुल दिखे, फ्रेश दिखे, सो मेकअप करने से 10 मिनट्स पहले इन आइस क्यूब्स को आपने अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रैप करके अच्छी तरह से रब कर लेना है। इट इंस्टेंटली टाइट्स योर पोर्स एंड स्टॉप एक्सेसिव स्वेटिंग। आप फील करेंगे कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा और जो आपको ऑयली क्रीसी फील हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो लिसन टू मी लेडीज, जब भी आप कभी कहीं बाहर जाने लगें या फिर मेकअप करने लगें सो इस हैक को लाजमी ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।

अच्छा, अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो द होम मेड ग्लोस सीरम, बेसिकली ये है, आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इट इंस्टेंटली हेल्प्स यू एंड ग्लो योर स्किन नेचुरली. क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करें सो आर्टिफिशियल चीज़ें वक्ती तौर पर आपको ग्लो देती हैं, वक्ती तौर पर आपको फील होता है कि रिजल्ट वर अमेजिंग, बट ट्रस्ट मी आफ्टर अ फ्यू टाइम यू विल सी कि रिजल्ट आर फेक एंड योर स्किन बिकम्स मोर डल. सो आई प्रेफर कि आप लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें क्योंकि इट्स रियली अफेक्टिव, इट्स ऑर्गेनिक. सो इस हैक के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने एक बाउल में एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है, साथ ही साथ आपने दो चम्मच रोज वाटर और साथ ही साथ एक कैप्सूल विटामिन ई का, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. और इनको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल कर लें. अब जब भी आप रात को सोने लगें तो सोते वक्त या मेकअप से पहले इसे आप अपने पूरे फेस पर लगा लें. आप फील करेंगे कि ये दुनिया का सबसे लोएस्ट यानी कि चीपेस्ट और बेहतरीन हाइलाइटर है जो स्किन को एक डिहाइड्रेटेड, एक प्लम्प, एक ऐसा इफेक्ट देगा जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगेगा, यानी कि आपकी स्किन नेचुरल तौर पर ग्लो करेगी. सो इस हैक को जरूर ट्राई करिएगा. वो तमाम तर लोग जो लोग फील करते हैं कि मौसम की चेंजिंग की वजह से उनकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, मेकअप बिल्कुल ग्रीसी लगता है और एक शाइन, एक ग्लो नहीं आता, सो लेडीज जरूर ट्राई करिएगा इस हैक को, बिकॉज ये रिमूव कर देगी आपकी स्किन की डलनेस को. और इट्स अ वेरी चीपेस्ट वे, इट्स वेरी अनएक्सपेंसिव वे.

अच्छा, अब जो नेक्स्ट हैक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स रियली इफेक्टिव, यानी कि इट्स अ रियली कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरी गर्ल एंड आई थिंक इट्स अ रियली कॉमन प्रॉब्लम फॉर मी. मेरे लिए भी ये काफ़ी मसला होता है, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्किन ऑयली है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो मैं उस चीज़ को क्या करती हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करती हूँ. मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ. तो लेडीज, अगर गर्मी में आपका ब्लश डेली बेसिस पर, जैसे कि आप कोई भी टेंट यूज करते हैं, कोई भी मूस्ट ब्लश यूज करती हैं, या फिर आप कोई क्रीमी प्रोडक्ट यूज कर रही हैं और आप फील कर रही हैं कि आपका जो ब्लश है वो ज्यादा देर तक फेस पे स्टे नहीं करता, जस्ट बिकॉज कि आपके पोर्स ओपन हैं और एक्स्ट्रा और एक्सेसिव ऑयल की वजह से आपका ब्लश बह जाता है, तो आप अपनी पसंद की पिंक या पीच लिपस्टिक लें, उसे थोड़ा सा अपने डेली मॉइस्चराइजर में मिक्स कर लें. अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है और मिक्सअप करने के बाद इसे आपने बिल्कुल टैप टैप करके अपने चीक्स पर और अपने लिप्स पर लगाना है. यू विल सी कि मॉइस्चराइजर, सो बेसिकली मॉइस्चराइजर के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके फेस पर स्टे करते हैं, आपके फेस पर रुकते हैं. सो जब आप इस ब्लश के साथ आप अपनी कोई भी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक की कंसिस्टेंसी थिक होती है, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने चीक्स पर और लिप्स पर लगाएंगे, सो यू विल सी कि ये काफ़ी देर तक स्टे करेगा और जो आपकी ये कंप्लेन है ना कि ब्लश बहुत जल्दी उतर जाता है, ये भी दूर हो जाएगी. ये आपको एक नेचुरल सन किस्ड फ्लश देगा जो स्वेटिंग से भी साफ नहीं होगा और बिल्कुल सा नेचुरल लगेगा. सो इस तरह की ये जो छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं, इन हैक्स को आप ट्राई करके गर्मियों में अपने मेकअप को सुपर स्टे, सुपर लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं.

अच्छा तो लिसनर्स, अगर मैं आपसे पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये एक चीज़ है जो मैंने बहुत ही ज़्यादा फेस की है। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस में आपको, मुझे और जितनी भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, हम सबको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, कामकाज के लिए आना पड़ता है। तो मैं ये चीज़ एक फील करती हूँ कि जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप कभी भी ज़्यादा देर स्टे नहीं करता, लाइक 1 to 2 hours के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। तो ये वो सभी हैक हैं जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और मुझे ये काफी इफेक्टिव लगे। सो देन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ भी इन हैक्स को शेयर किया जाए, ताकि वो तमाम तर महिला मित्र जिनकी बेसिक प्रॉब्लम्स ये हैं कि अब चूंकि गर्मियां तो आ चुकी हैं तो किस तरह से खुद को ब्यूटीफुल बनाया जाए, वो इन हैक्स से जरूर फायदा उठाएं। जी तो लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, इसी तरह मजीद और भी मजे मजे के हैक्स आपके लिए लाई हूँ। सो डोंट वरी, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को, आपकी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को आज मैं सॉर्ट आउट करके ही जाऊंगी। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक म्यूजिकल ब्रेक का, सो सुनते हैं ये मजेदार सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे एक बार फिर से मुलाकात।

तो लिसनर, जैसा कि हम बात कर रहे थे मेकअप के स्किन इम्प्रूवमेंट की और स्किन ग्लोइंग की, तो लिसनर्स दुनिया का कोई भी मेकअप आप पर तब तक अच्छा नहीं लग सकता कि जब तक आपकी स्किन अंदर से फ्रेश, अंदर से डिहाइड्रेटेड ना हो। कहा जाता है वाटर इज द चीपेस्ट ब्यूटी इंग्रेडिएंट, यानी कि अगर आप देखें तो आपकी स्किन के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अगर हम लिस्ट आउट करें तो सबसे पहले वाटर आता है, क्योंकि वाटर इज नॉट एक्सपेंसिव, प्लस वाटर आपकी स्किन को नेचुरली इतना फ्रेश कर देता है, यानी कि जो आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन में एक इफेक्ट दिखे कि बहुत ग्लोइंग है, बहुत रिफ्रेश है, और आपको किसी भी फेक हाइलाइटर की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? वाटर। दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा वाटर ही इजीली अवेलेबल होता है, वाटर कहीं से भी मिल जाता है, वाटर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होता है। तो कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सफ़ी दिखे, स्किन फ्रेश हो और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बने, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अंदर से हाइड्रेट करें, एंड देन बाहर से तो हाइड्रेशन हो ही जाती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो रिसर्च कहती है कि आपको हमेशा एक दिन में 8 से लेकर 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। जब आप डेली बेसिस में एक वीक के लिए 8 to 10 ग्लासेस वाटर पियेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो खुद ब खुद चमकने लगी है। मुझे एक पुरानी सी बात याद आ गई, हमारी ना नानी हुआ करती थी, उनके दौर में तो कोई भी फाउंडेशंस नहीं होते थे, उनके दौर में तो कोई हाइलाइटर्स नहीं होते थे, तो वो क्या करती थी अपने चेहरे पर जो नूर लाने के लिए, यानी कि वो अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए जो एक इंग्रेडिएंट करती थी, जो एक मेथड यूज करती थी, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी लिसनर्स से वो शेयर किया जाए।

0: अच्छा मेरी नानी क्या करती थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में तो मेकअप वगैरह नहीं होता था, सो उस दौर में भी जब जहाँ मेकअप नहीं होता था वहीं बहुत सारे लोग रोज वाटर को, रोजेस को ऐसा ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स बहुत यूज करते थे, और सबसे बढ़कर की पॉजिटिविटी। सो जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है, और साथ ही साथ रोज वाटर। सो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपको डेली बेसिस स्किन केयर में शामिल करना चाहिए, सो आई मस्ट से कि आपको रोज वाटर डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए, वाटर इनटेक ज्यादा करना चाहिए, प्लस उसके बाद आ जाती हैं बाकी तमाम तर चीजें जो कि आपको इनहेंस करती हैं, ग्लोइंग करती हैं। अच्छा वैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑयली स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मसले हैं, और जो ड्राई स्किन है उनका तो कोई मसला ही नहीं है। सो ट्रस्ट मी, एवरी स्किन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, बट आपको वो दिखती नहीं है क्योंकि आपकी स्किन, जैसे कि अब आपकी स्किन ऑयली है तो आपको तो ऐसे ही लगेगा कि नहीं ड्राई स्किन वाली बहुत अच्छे होते हैं। बट मेरी एक फ्रेंड थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कह रही कि अब नहीं है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट थी। तो अक्सर मैं ये चीज़ सोचा करती थी कि लाइक शी इज़ रियली लकी कि उसकी जो स्किन है वो ड्राई है, कोई एक्सेसिव ऑयल नहीं आता, कोई स्वेटिंग नहीं होती, कोई अजीब सा उसका मेकअप घुलता नहीं है। तो मैं हमेशा से ना ये एक चीज़ सोचा करती थी, बट ट्रस्ट मी, एक दिन वैसे ही हम लोग साथ बैठे हुए थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, और बातें करते करते स्किन केयर की बात हुई, मेकअप की बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि लाइक उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं विंटर्स में। विंटर्स में क्या होता है कि उसकी जो स्किन है वो ड्राई है तो बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ जाते हैं, इवन कि स्किन क्रैक होने लगती है, और सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। तो उस दिन मैंने ना ये एक चीज़ रियलाइज़ की, और मैंने सोचा कि मैं तो समझती थी कि ड्राई स्किन वालों के तो कोई मसले ही नहीं होते, और सारी प्रॉब्लम्स, सारी डिफ़िकल्टीज तो मेरी जैसे ऑयली स्किन वालों को फेस करनी पड़ती हैं। बट देन आई रियलाइज कि अगर आपकी स्किन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फिर दुनिया में होती ही हैं। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ वाओ, कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं पेश आई, ना कभी मेरे हाथ ड्राई आउट हुए, ना कभी ऐसा हुआ कि मेरी स्किन क्रैक हुई हो, लाइक इस तरह का कुछ भी नहीं मुझे हुआ। तो मुझे इस चीज़ से ये एक चीज़ सीखने को मिली कि हम इंसान क्या करते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं उनमें कोई ना कोई नुक्स तलाश करते रहते हैं, और जो दूसरे के पास चीज़ मौजूद है उसको बहुत अच्छा समझते हैं और उसकी तरफ देखते रहते हैं। बट देन आई रियलाइज कि आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप उसको किस तरह से इनटेक कर रहे हैं, किस तरह से इनहेंस कर रहे हैं, क्योंकि स्किन कोई सी भी हो, सभी को ज़रूरत होती है प्रॉपर केयर की। तो फिर इसी तरह बातें करते करते मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हो कि जिससे जो तुम्हारी ड्राई स्किन है वो उस पर पैचेस ना पड़ें, तुम्हारे हाथ पाँव स्वेल ना हो। सो उसने मुझे बताया कि वैसलीन इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर दोज पीपल हु हैव अ ड्राई स्किन, वेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। सो उसने मुझे बताया कि वो डेली बेसिस में क्या करती है, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर वैसलीन लगा कर अच्छी तरह से, और वो सो जाती है, समटाइम्स वो ग्लव्स भी पहन लेती है ताकि उसके हाथों को, उसके पाँव को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने कहा जहाँ हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन के मसलों की, मसाइल की, तो वहीं क्यों ना हम ड्राई स्किन वालों की भी बात करें। सो जितने भी लोग जिनकी ड्राई स्किन है, आप ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे प्यारे लिसनर्स जिनकी है ऑयली स्किन मेरी तरह, तो आज जो तीन हैक्स मैंने आप सभी से शेयर करिए वो लाजमी ट्राई करिएगा। सबसे पहले आपने रोज़ वाटर वाले और एलोवेरा वाले वो जो क्यूब्स हैं उनको अपने मेकअप से 10 मिनट पहले अप्लाई करने हैं। सेकेंडली, जो आपको मैंने एक हाइलाइटर बताया है, नेचुरली ग्लोइंग हाइलाइटर, इसको भी आपने मेकअप से पहले ट्राई करना है। और थर्ड और लास्ट हैक, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोइंग दिखें, आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट दिखें, तो आपने लास्ट में अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करना है। अच्छा तो लेडीज, मुझे जल्दी से मैसेज करिए हमारे नंबर 01157100971 पर, वहाँ जाकर और मुझे बताइए कि आपका सबसे फेवरेट स्किन, यानी कि आपकी जो स्किन है उसका सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है। होता है ना कि डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, बाज़ूकात कोई एक चीज़ होती है जो एक इंसान को सूट करती है, एंड ऑन द अदर हैंड जब दूसरा इंसान वही चीज़ यूज़ करता है, यानी कि वही इंग्रेडिएंट यूज़ करता है, तो वो उसको सूट नहीं करता। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ड्राई स्किन होती है, तो जब वो लोग क्या करते हैं, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो मज़ीद ड्राई हो जाती है। सो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपका फेवरेट स्किन इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक कौन सा है और उसने आपको किस तरह से अफेक्ट किया, ताकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं सभी लिसनर से शेयर करूँ। साथ ही साथ लिसनर्स, आप सभी के लिए है मेरा एक और सवाल कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन समर्स, क्योंकि विंटर्स के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं होते बट समर के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या आपको टैनिंग का मसला है या आपको ऑयली स्किन का मसला है, आपने लास्टली मुझे बताना है। और बताने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि 01157100971 इस नंबर के जरिए से आपने मुझे बताना। याद रखिए कि आप जैसे भी हैं बहुत हसीन हैं, बस थोड़ी सी सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फ केयर, थोड़ा सा खुद पे ध्यान आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। सो मैं अपनी तमाम तर लिसनर से, स्पेशली फीमेल लिसनर से यही कहूँगी, यू आर रियली ब्यूटीफुल, यू आर रियली प्रिटी, बट आप हर काम अच्छा करती हैं, आप हर काम परफेक्ट करती हैं, आप हमेशा कोशिश करती हैं कि आपकी वजह से आपके आसपास के लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। बट जो एक चीज़ है जिसे आप हमेशा इग्नोर कर देती हैं, वो है आपका खुद का सेल्फ और आपकी स्किन। सो इस समय मुझसे अहद करें कि आप अपनी स्किन को ज़रूर ध्यान देंगे और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ अभी शो में वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, और बातें करते करते मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि हम कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ें, लेकिन चूंकि टाइम की रिक्वायरमेंट है तो हमें बढ़ना पड़ेगा। सो जी चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापसी पर आपसे होगी मुलाकात और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और फिर ब्रेक के बाद हमारा वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट का आई थिंक सो फीमेल्स के साथ साथ मेल पर्सनैलिटीज को भी इंतज़ार होता है, क्योंकि अब सोसाइटी बदल गई है और आज के दौर में बहुत से जो डोमिनेंट किस्म की मेल पर्सनैलिटीज थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, और मैंने जितना नोट किया कि अब मेल भी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो हम अपने उस सोलफुल सेगमेंट का आगाज करेंगे बट एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। सो चल
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहां पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
12: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
12: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
12: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
12: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
11: टेस्ट भी, वाइब।

Welcome back, my incredible listeners. You are listening Radio Faza 97.1 FM with RC Zainab Fatma. जैसा कि लिसनर्स आपको मुझे साथ में गुफ्तगू करते हुए गपशप करते हुए तकरीबन अब दो घंटे करीब होने को है सो एक बार फिर से आज का कोट ऑफ द डे रिपीट कर देती हूँ उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया था ताकि उनकी लाइफ में उनकी जिंदगी में भी कुछ तब्दीली रोनमा हो कुछ मोटिवेशनल आ जाए जी तो लिसनर्स हमारे आज का कोट ऑफ द डे ये कहता है कि अगर somehow आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं आपने कुछ प्लान किया होता है चीजों को डिफरेंट एंगल से देखा होता है और एट द एंड आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता आपको वो चीज नहीं अचीव होती जो आपको चाहिए होती है उस एक मोमेंट में आप क्या करेंगे अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम मायूस हो जाएंगे ना उम्मीद हो जाएंगे और हम कहेंगे चलो बस ठीक है हमें जो चाहिए था हमें वो नहीं मिला सो दैट्स इट ओके बस ठीक है लेकिन आपने उस मोमेंट में स्टॉप नहीं होना अगर आप फेलियर के डर से स्टॉप हो जाएंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे सो फेलियर को एक्सेप्ट करें कोशिश करें कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हो जाती हैं जो कि हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती उनमें भी पॉजिटिविटी को आप ढूंढें कि अच्छा अगर ये काम ऐसे हुआ है तो इसके पीछे के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे या फिर इसके अंदर मेरे लिए क्या चीज छुपी हुई है क्या ऐसा राज है क्या ऐसी चीज है जिसका मुझे अभी तो अंदाजा नहीं हो रहा लेकिन बाय द टाइम के साथ साथ मुझे पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या एक अच्छी चीज थी तो कोशिश अपनी यही रखिए कि पॉजिटिव रहिए फेलियर से बिल्कुल मत डरिए और अगर आप हार जाते हैं तो उठ खड़े होइए और दोबारा से ट्राई करें क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे तो यू विल लर्न कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी और आई थिंक सो कि इस टाइम आप जरूर अचीव करेंगे द थिंग दैट यू वांट जी तो लिसनर ये था हमारा कोट ऑफ द डे मैंने सोचा कि उन सभी लोगों के लिए उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया था उन्हें एक बार रिपीट कर दूं और मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि अपने लिसनर्स के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कोट ऑफ द डे ढूंढ कर लाऊं जिन्हें वेरी फेमस फिलोसोफर्स ने लिखा है ताकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए कुछ पॉजिटिव एनर्जी आए और आपको मोटिवेशन मिले क्योंकि डेली बेसिस पे हम इतना काम करते हैं इतने बिजी होते हैं और समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है अ लिटिल बिट अटेंशन की अ लिटिल बिट रिकॉग्निशन की और अ लिटिल बिट मोटिवेशन की सो अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो काम अच्छे से होगा मोटिवेटेड पीपल हमेशा खुश रहते हैं ऑन द अदर हैंड जो डीमोटिवेटेड होते हैं दे फील स्ट्रेस्ड दे फील एंजाइटी और फिर जिंदगी के हर काम हर चीज़ उसी तरह से मेस्ड अप होती चली जाती है सो कोशिश यही होती है कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ले कर आया जाए आई थिंक काफी भाषण हो गया है अब जरा म्यूजिक की जानिब बढ़ते हैं और सुनते हैं ये सोलफुल सा ट्रैक बेसिकली तो थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा सा सैड ट्रैक है बट ट्रस्ट मी अगर आप इसके लिरिक्स पे फोकस करें सो इट्स अ रियली ऑथेंटिक इट्स रियली लाइक ब्यूटीफुल हैं बहुत सॉफ्ट से हैं बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है मुझे इस तरह का म्यूजिक पसंद है जिसमें लिरिक्स अच्छे हों लिरिक्स प्यारे हों शोर शराबा ना हो लेकिन आजकल की जो हमारी जेंसी आवाम है वो क्या करती है कि ये जो शोर शराबे वाले गाने होते हैं ये उनको प्रेफर करती है बेस में लिरिक्स कुछ भी नहीं होते बस एक शोर सा हो रहा होता है और ये लोग कहते हैं ओ वाओ इट्स म्यूजिक नो इट्स नॉट अ म्यूजिक म्यूजिक तो बेसिकली वो ट्यून्स वो थीम्स वो चीज होती है जो आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रांग करे और आपको अंदर से एक सॉफ्ट इम्पैक्ट दे आपको एक रिलैक्स फीलिंग दे सो देखते हैं लिसनर्स आपको ये साउंड ट्रैक कैसा लगेगा सुनते हैं ये मजेदार सा सॉन्ग

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग हद को एंजॉय किया होगा जिसे नवजात ओचला ने अपनी ब्यूटीफुल सी आवाज में गाया है। आई थिंक सो इट्स अ रियली सोलफुल सॉन्ग फॉर दोज पीपल्स जिनको जरा लाइट सा म्यूजिक पसंद होता है, लाइट सी ट्यून पसंद होती है और वो लोग चाहते हैं कि म्यूजिक हो लेकिन शोर शराबा ना हो। सो उन लोगों के लिए ये सॉन्ग एक बेस्ट रिकमेंडेशन है। वैसे अगर लिसनर्स आपकी भी ऐसी कोई रिकमेंडेशंस हैं या फिर ऐसी कोई पसंद है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे शो में किस तरह के सॉन्ग्स प्ले करने चाहिए, ऐसे सॉन्ग्स जो आप पसंद करते हैं या फिर आप सुनना चाहते हैं। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है हमारे शो के सबसे इनक्रेडिबल, सबसे पावरफुल सेगमेंट का। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आवर शो इज ऑल अबाउट द फीमेल, इज ऑल अबाउट डिवास। तो जहाँ बात करते हैं हम दीवा की, तो एक ओरिजिनल, एक रियल दीवा हमेशा वही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और उसका ग्लो, उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसकी मोटिवेशन होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आ दीवा मीन्स अ गर्ल हु इज़ रियली प्रिटी, हु इज़ मॉडर्न, हु इज़ द फैशन आइकन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन माई ओपिनियन, दीवा हमेशा वो होती है जिसके अंदर एक विल पावर होती है कुछ नया करने की, कुछ आगे बढ़ने की और कुछ दुनिया को नया करके दिखाने की। जैसा कि आज हमने शो के आगाज में भी बात की थी कि किस तरह से जब हम जिंदगी में गिर जाते हैं तो वहां से आप अपनी नई बुनियाद खड़ी करते हैं। आज की जो हमारी दीवा हैं, इन्होंने भी ना सिर्फ अपनी बुनियाद खड़ी की बल्कि पाकिस्तान की हजारों फीमेल्स को वो रास्ता दिखाया, यानी कि उन्हें भी अपने पाँव में खड़ा किया। अच्छा, अब इसी से मेरे माइंड में एक चीज आई, सोचा क्यों ना लिसनर्स से भी शेयर की जाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने फ्यूचर को इमेजिन करते रहते हैं, ऑल द टाइम सोचते रहते हैं कि अच्छा फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में उनके पास क्या नहीं होगा या फिर फ्यूचर में उनके पास क्या होने वाला है। सो इसी पे द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जो आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में हो उसे खुद से क्रिएट करो, ना कि प्रिडिक्ट करो कि ये चीज होगी या फिर आएगी। तो आज हम दास्तान सुनेंगे द वेरी फेमस जहां आरा की, यानी कि एक ऐसी हातून की, एक ऐसी फीमेल की जिन्होंने उस दौर में, यानी कि उस टाइम पीरियड में स्टार्टअप लिया, एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियाद रखी जब लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, ये उस दौर में बिल्कुल न्यू था। आई फील लाइक कि लोग जानते भी नहीं होंगे कि इस तरह की भी कोई टर्म यूज होती है। चलिए इनकी सुपर इंस्पायरिंग बायोपिक को जरा गौर से सुनते हैं और आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। सो बेसिकली जहां आरा कराची में पैदा हुई, लेकिन उनकी जो इनिशियल परवरिश थी, यानी कि उनकी जो तालीम

हैं जो ये चीज समझते हैं कि फीमेल तो कुछ कर नहीं सकती। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री को देखें, तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो हमारे फीमेल्स ने ही लिए हैं। सो जहां आरा साहिबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास ढेरों सारे पैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि एक सॉलिड आइडिया की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास आइडिया होगा तो रिसोर्सेज, टीम वर्क और ट्रेनिंग, ये सब तो फिर इंसान खुद बहुत मैनेज कर ही लेता है। सो डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम। हमेशा से ये चीज़ कहा जाती है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, व्हेन दे हैव अ अपॉर्चुनिटी एंड दे ट्राई टू एग्जिट इट, यानी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हो, ना कि आप वेट करो कि ओ मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं सो मैं नहीं कर सकती, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे बिजनेस का है, या फिर है ऑनलाइन काम का, तो आज ही आप उस अपने आइडिया पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर जहां आरा साहिबा इतना बड़ा इनिशिएटिव ला सकती हैं, दुनिया को टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूव करवा सकती हैं, तो आप में और हम क्यों नहीं। सो बी अ डीवा हु बिल्ड एम्पायर फॉर हरसेल्फ। इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ आपको इनकी मेस्मराइजिंग सी, खूबसूरत सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। जी तो लिसनर्स, जहां आरा साहिबा की इस खूबसूरत सी आइकॉनिक डीवा की स्टोरी के एंड के साथ साथ हमारे शो के एंड का भी वक्त हुआ चलता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ जुड़े हुए उन लोगों का ख्याल रखिए जिनकी लाइफ आपसे कनेक्टेड है, जो लोग आपसे रिलेट करते हैं, क्योंकि एहसास ही से इंसानियत का जज्बा उजागर होता है। जब आप अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों का एहसास नहीं करेंगे, तो इट डजेंट मैटर कि आपका उनके साथ ब्लड रिलेशन है या नहीं, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि ब्लड रिलेशन है या नहीं, लेकिन मैटर क्या करता है कि एहसास का रिलेशन होना चाहिए। सो जितने भी बच्चे इस वक्त ये शो सुन रहे हैं, उन तमाम तर लिसनर से मैं यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प आउट करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं जस्ट टू गिव देम, यानी कि हमें वो एक अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप भी उनका ख्याल रखें, एहसास करें, प्यार करें। और शो के एंड पर एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स को मैं बताती चलती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो जल्दी से जाइए और इस नंबर पे जाकर कोई अच्छा सा प्यारा सा पैगाम मुझे लिखकर भेज दें, आपके पैगाम का इंतज़ार रहिएगा। इसके साथ ही आपको मेरा शो कैसा लगता है और मज़ीद इस तरह की कोई भी चीज़ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप radiofaza.com.uk की वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहें। तो लिसनर्स, शो का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है। सो आज के कोड ऑफ द डे से ज़रूर सीखिएगा और खुद को मोटिवेट रखिएगा उस वक्त जब आप फेल हो रहे हों, क्योंकि वही तो घड़ी होती है जिसमें इंसान खुद को बदल सकता है। हैप्पी मोमेंट्स में तो सभी मोटिवेट रहते हैं, बट द मेन थिंग इज कि सैड मोमेंट्स में भी इंसान को मोटिवेट रहना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। जाते जाते एक म्यूजिकल ट्रैक प्ले कर देती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप इस खूबसूरत से ट्रैक को इंजॉय करें। साथ ही साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07152997779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling,

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: तू को जा, मन को जा।
8: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG51EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
9: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
10: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
9: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
10: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
9: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
10: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
9: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
11: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
9: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
12: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
14: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
14: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
15: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
13: Park Foods, जो नाम है मायार का।
16: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
17: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
16: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
17: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
16: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
18: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंघम NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
2: Planning a wedding, reception or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station.
6: That plays
7: foot tapping music.
8: Hazar 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

खोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

सुनते रहिए क्योंकि रेडियो फजा एफएम 97.1 एफएम आपका अपना रेडियो है, कहीं मत जाइएगा। प्रेमचंद लिखते हैं कि हमें हुस्न का मयार तब्दील करना होगा, अभी तक उसका मयार अमीराना और ऐश परवाना था। मोहम्मद यूनुस भट्ट लिखते हैं, कहते हैं सिगरेट के दूसरे सिरे पर जो राख होती है दरअसल वो पीने वाले की होती है।

चिराग गोरखपुरी लिखते हैं, सोजो गुदाज में जब पुख्तगी आ जाती है तो गम गम नहीं रहता बल्कि एक रूहानी संजीदगी में बदल जाता है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222

ब्रेक पे जाने से पहले फिराक गोरखपुरी की एक लाइन आपकी नज़र करते हैं कि गम कभी एक तरबिया पहलू होता है और निशात कभी एक अलमिया पहलू होता है। इंतज़ार हुसैन लिखते हैं कि अफसाने का मैं तसव्वुर ही यूं करता हूं जैसे वो फुलवारी ज़मीन से उगती है। इंतज़ार हुसैन का एक कौल है कि कदीमी समाज में अफसाना होता था, अफसाना निगार नहीं होते थे।

अभी हम बात करेंगे नौजवानों की, क्योंकि नौजवान सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल की पहचान होते हैं। उनके ख्वाब, उनके सोच, उनके फैसले मुआशरे का मुस्तकबिल बनाते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। जिवें बदलां दे ओले होया चन्न, ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
4: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station. That plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
9: यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें।

0: मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं?
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for

0: your property, look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026, इश्को सुरूर की महफिल, कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552538250। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ज़क्के इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: Planning a wedding, reception or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने

मेहमा किसे किसे पुकारिए किसे किसे पुकारिए जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: yamazdım.
1: It's commercial time.
2: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552-538250.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
7: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
6: hayatweddings.co.uk।
7: Radio Fazza, for all your information, communication and entertainment needs.
8: Radio Fazza.